एवेनष्टेयाता न एङता सोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया शेका